बड़े किया बड़ियाया किसका ना कहना जा। सो करता कादर करीम दे जी आर जगसंबाए साई कार कमाउनी तो छोड़ी।

छत्र चक्रवर्ती छत्र चक्र उपदेश्यं पादुकं सदास कृते दुकालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदायं संगे अपंगं विभूते देखते गुप्ते नुसरत बेदर्नियात नानुर्गो बेंसे श्रीकाल पुरुष जाय दरबार।

हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीन अकलंक रूप अपार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भू प्रतभान दस चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोक शोक बिदार कल काल करम विहीन सब करम धर्म प्रवीन अन

ना जद फिरत मोर बादर करत गोर दामनी अनेक भाव करियो करत है। चंद्रमा शीतल न सूरज ते तपत तेज इंद्र सोन राज भव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न वेद चारी सनत कुमार से तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा विष्णु कित वेद यो पुराण कित सिमृत समूहन के होय होय बितय है। मोहन दीप तार कित अश्विनी कुमार कित अंसा अवतार कित काल बस भय है। वीर यो पिकम्बर कित गने ना परत इत भूम ही तविक फिर भूम ही मिलय है। जोगी जाति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया गई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीब औदलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सरद्रुजोधन से मानदारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तोप चीक पट बेस पोसती अनेक दानी वावत है। शीस कौ कहा भयो मल्ल जो पे काढ़त अनेक दंड सोत न डंडौत अस डांग अथ तीस कौ कहा भयो रोगी जो पे डारो रहे उर्ध मुख मानते न मुंड ने हो रायो आदेश कौ कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश कौ। शीस पट कत जाके कान में खजूरा दस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक सौ आंख को चरैया फल फूल को बछैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न बोक सौ कहा भयो भेड़ जो घसत शीस वृक्षन सो माटी को बछैया बोल पूछ लीजे जोक सौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेड पर लोक सौ। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करो ई करत है। एक पाए ठंड सदा मन में रहत वृक्ष फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जोग एक ठौर बास करे काग और चील देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दीन कैसे कह तरत है। जैसे एक सोंगी कहूँ जो किया बैरागी बन कब हूँ संन्यास भेष बन कह दिखावई कहूँ बन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सौ अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी कहूँ दंडधारी हो के लोगन भ्रमावई कामना अधीन पर नाचत है नाचन सु ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार की तर पुकारे पर शीत काल गुंजर ओगा दहा अनेक दा पुकार ही कहा भयो जो पे काल वत्र लियो।

करता करीम सोए रास कर रहीम ओए दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही के सेव सब ही गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओए मान सब एक पय अनेक को भ्रमाओ है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यार न्यार दे।

एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कूट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते ऊन को करत फच, केते अच वच हो सपच उड़ जाहेंगे। केते नभ बीच अच पच को करेंगे बच, केतक प्रताच हो पचाए खाए जाहेंगे।

ज्यों तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताहि तयो बज सब ताहि में समाहेंगे। कूकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग बास कित मदीना मक्का निवासी के तक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चौहार बूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हरे मड़ी मटली बहारे बीतन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तपंत हारे तापसी। त्व प्रसाद भुजंग प्रयात छंद न रागं न रंगं न रूपं न रेखं न मोहं न क्रोहं न द्रोहं न द्वैखं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भामं लेखं बेखं जोनि स्वरूपं।

न कर्मं न बर्मं न जन्मं न जातं अद्वैखं अवेखं अजोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयं परापरं प्रज्ञा प्रकाशी अचेतं गच्छयाद अद्वैया विनाशी न जातं न बातं न रूपं न रंगे नमो वाद भंगे नमो वाद भंगे।

देह ग्रहं कहूं देह दुखं कहूं औषधि रोग के शोक सोखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सात की तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूम की भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हूं कहूं जक्ष विद्या धरे मानवी हूं कहूं राजसी हूं कहूं राज

नहीं सत्र मित्र जेह नेह गेह नहीं चेहन चित्र जेह रंग रूप नहीं राग रेख जेह जन्म जात नहीं भरम वेख जे करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जेह नाम धाम नहीं बर्ग ब्याद जेह रोग शोक नहीं सत्र साथ जेह त्रास वास नहीं देह नास जेह आध अंत नहीं रूप रास जेह रोग शोक नहीं जोग जुगत जेह त्रास आस नहीं भूम भुगत जेह काल ब्याल कट्यो नांग अच्छा स्वरूप अखय अभंग जेह नेत नेत उजरंत वेद जेह अलख रूप कथत कतेब जेह अलख रूप आसन अडोल जेह अमित तेज अच्छा अतुल जेह ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत घाम वर्खा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई

कई अगन होत्र कई पवन हार कई करत कोट मृत को आहार कई करत साग पै पत्र भाषण तदब देव हो पद प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अगन होत्र कहूँ तीरथ धरम कई देश देश बाकार टंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई करत भांत भांतन विचार नहीं नैकता सपायत न पार कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम कई अग्न होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदपता सपायत न पार कहूँ राजरीत कहूँ जोग धर्म कई सिमृत शास्त्र उचरत सो करम न्योली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ बिरद चार कहूँ करत जाच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घदान कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र स्मृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रमत देश देशन उदास कई जन निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदपतास पायतन अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदप दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान पव करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन फोकटो सर्व

जय जम पह जो कण जो हजुअंग भय कंप मेर पयाल भुवंग तप ताप सर्व जलेर थलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद अनखेद स्वरूपा भेद भयंगन खंड अभूता छेद छयंगन काल अपाल दयाल स्वंग जे ठटियंग मेरा आकाश भुवंग अनखंड अमंड प्रचंड रंगजे रचयंग देव देव वरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जे रचयंग सर्व मकीन मका जे राग न रूप न रेख रुखंग जे ताप न साप न शोक सुखंग जे रोग न शोक न भोग भुयंग जे खेद न भेद न छेद छयंग जे जात न पात न मात पितंग जे रचयंग छत्रि छत्र चितंग जे राग न रेख न रोग भणंग जे द्वैख न दाग न दोख गणंग जे हे अंड ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नवखण सचियो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नकिंद नकंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव बेव नरंग नर पाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड सेत उद भुजंग किए देव देव सराध पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत चुतंग जे तात न मात न व्रात सुतंग जे रोग न शोक न भोग भुवंग जे जंप है किन्नर जाच जुवंग नर नार नपुंसक जाय किए गण किन्नर जाच भुजंग।

प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली। वो मेरा आकाश निवास रज रोज एकादश चंद्र वृतंग दुत चंद्र दिनी सह दीप दई। जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए। जय छत्र उपाय जपाय दिए। जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव देव सच्चे। अंधूत भूत छूत मतंगन गाद प्याद अनाद गतंगन खेद भेद छेद नरंग। जय चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग। जय शोक न भोग न जोग जुगंग। भुव भंजन गंजन आदि सरंग। जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जक्ष भुजंग रचे। मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग। जय पार न पावत पूर्म तंग अन खंड स्वरूप दंड प्रभा।

अगंज आदि देव है अभंज भंज जानिए भूत भूत है सदा गंज गंज मानिए अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्धता सदैव सर्वसात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदैव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अचिज तेज मानिए सदैव सिद्ध शुद्धता प्रताप।

विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेख विश्वभरण है, जिमे जमान के विके सदीव करम भरम है, अद्वेक है अभेक है अलेख नाथ जानी है, सदीव सर्वठोर मैं विशेख न मानिए, न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराण या कुरान नेत नेत कह बतावई, न करम में न धर्म में न भरम में बताइए, गंज आदि देव है कहो सो कैसे पाइये, जिमी जमान के विके समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है।

अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न गाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेक है वलिय रूप राग रंग है न द्वैक है न भेक है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है।

गजादपि नरादपि करंतु सेवह सदा से तस्पति तपस्पति वनस्पति जपस्सदा अगस्त आद जे बटे तपस्तपे विशेखिय बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिय अगाध आद देव की नाद बात मानिय न जात बात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानिय सदीव सर्वलोक।

जात पात ना तात जागो मंत्र मात ना मित्र सर्व ठौर बिखेर मयो जे चक्र चहन न चित्र आद देव उदार मूर्त गाधनाद अनंत आद अंत न जानिए अभिखाद देव दुरंत देव भेव न जाने जे मरम वेद कतेब सनक औ सन के संदन पावे ही न।

सर्व सबद पतार के दर जानिए जह जोत शेष नाम सहन सफन नहनेत पूरन होत सोध सोध हटे सफ है दुर्विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाए किन्नर करब पड़त पड़त थके महा

देह के हन ने सने अभेह नाथ अजीत सर्व गंजन सर्व मंजन सर्व ते अनभीत सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयालत वेख चक्र चिहन न वर्ण जा को जात पात न भेख रूप रेख न रंग जा

देव गंधर्व किन्नर मच्छ कछ अपार भूम काज ले थले मेहमानी जह नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद मित्र पालक शत्रु गालक दीन दयाल मुकंद अघो दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हर नंग पुष्ट कर नंग सर्व के प्रतपाल सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुगता सर्व जुगता

नारद आदक वेद व्यास कमुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कूट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच बछर पार सोद सोद थके।

कहां रंग राजा कवन हरक सोग है कवन गुरु की रागी कवन कहो तत्व है दवन दोहरा कवन सृष्ट को पुष्ट है कहां सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो।

आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप ते चंडा सुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र विद्रुण सन्मयक मथे दान प्रहार नरक निवारण नदम उदारण ऊर्धे जय जय हो से मखा सुर मर्दन नमक बर्दन आदि प्रते डावरू डवंगे बबर बवंगे बुजा फरंगे तेज बरंग लंकुड़िया फांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत जमके भूखण दमके असज जमके फुंक फनंग जय जय उसी मैं खासुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिनंग चंडा सुर चंडन मुंड में मुंडन खंड अखंडन खून खिते दामने दमंकन धुजा परंकन फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विवरखण दुष्ट प्रकर खण पुष्ट प्रहर खण दुष्ट मथे जय जय हो से मैं खासुर मर्दन भूमा कासल उर्द अथे दामने प्रहासन सुषम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुड़।

चाचर चमकारं छुरहारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़ी प्रदंते जोग जयंते मरुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय उसी मैं खासुर मर्दन भरम विनाशन धरम धुजे गुं गुरु गमंगण सहस्र निमंगण फणियर फुंकारण धरम धुजे अष्टाढ़ प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्ना हे अगम था हे एक वृते जय जय उसी मैं खासुर मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष विनाशन वृत मथे कावरू कुमारे अधम उदारे नरक निवारे याद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंगारोहन बितल तले जय जय हो से सब ठौर निवासन बाय पताल आकाशन ले संकटे निवारण नधम उदारण तेज प्रकरखण तुंद तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती याद अनाथ अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जीवे जय जय होशी शस्त्र प्रकरखण आदि अनिल अगाध अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामने दमंके के हर लंके आदि अतंके क्रूर कथे जय जय होशी रक्तासुर खंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज बिलोचन प्रतन विमोचन सोज विसोजन गौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरनासे सुप्र सुभासे दुष्ट ग्रसे चंचला प्रहंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय होशी मैं खासुर मर्दन आद अनाथ अगाधोर्धन घंट का विराजे रुण झुन बाजे भ्रम भय बाजे सुन सुरंग को किल सुन लाजे किल बिग बाजे सुकूप राजे मध उरंग दुर्जन दल दजे मंदन रिज सब न भजे रोह रणंग जय जय होशी मैं खासुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोष रोदन क्रूर प्रत्ये धुमराज विदुंसन प्रलय प्रचुंसन जग विदुंसन शुद्ध मते जाल बाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय होशी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते खत्रियान खतंगी अभय भंगी आदानंगी अगाध गते ब्रिडलाज बिहंडन चछुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय होशी मैं खासुर मर्दन विश्व विध्वंसन सृष्टि करे दामनी प्रकाशे उन्तन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकरखण सर्वर वरखण दुष्ट प्रदरखण बितल तले अष्टायत बाहन बोलले बाहन संत पनाहन गूढ़ गते जय जय होशी मैं खासुर मर्दन आदनाथ अगाध वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रदक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना हे दुष्ट प्रदा हे अर्दल का हे दुख हरे गंजन कुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने याद अंते जय जय होशी मैं खासुर मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ कहिली ज्योत जतीली तुंद मते अष्टायद चमकण शस्त्र जमकण दामिन दमकण आद वृते डुगडुकी दमंके बाघ पवंके भुजा फरंगे शुद्ध गते जय जय होशी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरख निवारण पति दो धारण एक भटे पापान विहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे चंद्रानंचार

तुम कहो देव सर्वं विचार जिम क्यों आप करते पसार जद बबोधन भय अनंत तो कहो जथामत त्रैण तंत करता करीम कादर कृपाल अद्वय भूत अन भय दयाल दाता दुरंत दुख दुख रहत जेह नेत नेत सब भेद कहत कई उच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जा को प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई पलट सूरत सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वै कै लखाए अंछिज तेज अन

रूप रेख कहे बात तास कहे कौन अभेक कहे नाम ताज है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जे चक्र चिहन नहीं रंग रूप जे खेत भेद नहीं करण काल सब जीव जंत की करत पाल उर्दंग विरह सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिज दाग जल तल महीप बंधन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीना न दोग दहता अवतार कई गोट इंद्र जय पान हार कई गोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत त्व प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे नित संतु बारक नीमन गारे पश पशु नक नाग नरा देव सर्व समय सबको प्रतपार पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम विचारे दीन दयाल दयानित दुखन देखत है पर देत न हारे दाहत है दुख दुखन को दल दुजन के पल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारन पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार है पार न पाए सके पदमावत वेद कते वेद उचारे रोज ही राज बिलोक तराज करो कुरुहान की रोज नटारे कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अंगमेव न भेव लख्यो भ्रम स्यो भरमाए वेद पुराण देव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यो किन श्री पदमापत पाए आद अनंत अगाध तवे सो भूत भविख भवान भय है अंत भी नाथ मापद अगाध दुख अचिद्र छह है लोगन के करता हरता जल मै दल मै भरता प्रवह है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्री पदमापत ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त अगेह अच्छ है जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह है काहे को डोलत है तुमरी सुत सुंदर श्री पदमापत लय है रोगंते अर सोगंते जल जोगंते वो भांत बचावे शत्रु अनेक चलावत गावत उतन एक न लाग न पावे राखत है अपनो कर दे कर पाप संभोहन भेट न पावे और की बात कहा कहे तो सो सो भेट ही केवल बीच बचावे जाच भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूम आकाश पताल रसादर जाच भुजंग सब सिरन्यावे पाए सके ने पार प्रभा हूं को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुरहार परे हर हाथ ना आवे नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हो मिल गायो भेद कतेव न भेद लखेव सब हार परे हर हाथ ना आयो पाए सके ने पार उमापद सिद्ध सनात सनंदन ध्यायो ध्यान धरो ते को मन मै जह को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान अभेद रिपान सब बचहारे भेद न पाए सक्यो न भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साख न शोक न संग त्यारे आद नाथ अगाध बेगत वैग जप्य उतनी ही कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिर कर भेस्त बोधन के सरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुख कारे दीन दयाल अकाल।

अत्र के चलैया क्षेत्र छत्र के धरैया छत्र धार्य के छलैया महासतरण के साल है। दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जतैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञात महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार बाबा हिंगुला हिमालय ध्यावे गुर कर तेज गुण गावे तेरे नाम है। जो कि जोग साधे पौन साधना की तेक बांधे अरब के अरबी अराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कूरे से जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मरटा मंगेले तेरी मन सो तपस्या करे दृढ़ वै तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहले माग दे सके मंगेले फिर बंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुण गावे चिन्ह मचीन के शीस न्यावे ते पति थे आये दुख दे के दलत है। जिन्हें तोहे ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल स्यों फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग दान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे नदीन साधा दीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार बल पाछे पहो जाता है चिट्ठी की चिंगार पहले ही सुनियत है। कित इंद्र द्वार कित ब्रह्मा मुख चार कित कृष्णा अवतार कित राम कहियत है। कित शस्त्रासी कित सूरज प्रकाश कित मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। कित महाधीन कित व्यास प्रवीण कित कुमेर कुलीन कित जच कहियत है। करत है विचार पैन पूर्ण को पावे पार ताहित अपार निराधार लहियत है। पूर्ण अवतार निराधार है न पारावार पाइय न पार पै अपार के बखानी है। अद्वय अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूं के राशि है अनासी कह के मानी है। जंत्र हूं न जात जा की बाप हूं न मायता की पूर्ण प्रभा की सुछटा के अन मानी है। तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानी है। तेज हूं को तार है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता के सार है। कामना की हान है के साधना किसान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपनों को भूप है के रूप हूं को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनी मन को कारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है गनी मन करिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूं के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को बोगत है के वृद्धता की बासी है। जो को हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूं को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सार है। को बचैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है। विश्व को भरण है के अपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाइये न पार पारावार हूं को पार जग की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय गावे हब्बसी हलब्बि द्यावे पूर्वी न पार पावे असत्य अनास है। देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अभेव नाद अद्वे अविनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के। देवन के देव महादेव हूं के देवनाद भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है धरैया ध्रुम चाल के। कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसी छीरा वध छाच कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छब काल इंद्र के कूल के। हंसनी से हरो मही रसी हो सना बाद गंगा कैसी धार चली सतो सिंध रूल के। पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद नी के रही झूल के। चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चंदागढ़ गिरत तिहारी रही मालती सी फूल के। फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी पूर सी ससी सुरंगाबाद नी के सोहियत है। हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसे हाजीपुर देखे मोहियत है।
चंदन से चंपावती चंद्रमा से चंद्रगिर चांदनी से चंदगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगधार बकान से बिलंदवाद कीरत तिहार की ओजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है भकरी कंधारी गोर गखरी गर्दे जचारी पौन के आहारी तेरो नाम दयायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्वठौर मैं विराज जहां जहां जाइयत है पूर्ण प्रताप यंत्र मंत्र दया तापी नाथ की।

चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव शुभम सदास दुकालम प्रणासी दयालम स्वरूप सदा अंग संगे अपहंगं देखते गो फते नुसुरदेत अजनान गुरु गोविंद सिंह जी सरकार पुरख जी सह दरबार तुर दरबार सतखंड वसे लक्ष्मी खरी तुमरे दरबार सर्व देख गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी पूर्ण गुरु अवतार जगमग जोत विराज रही श्री अब चलन करिया पार सतखंड के

बलहारी कुदर तपस्या ते रात न जाय लगे राहो। जात में जोत, जोत में जाता अकल कला भरपूर्ण आ। तू सच्चा साहिब सिफत सवाली हो।